बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पाप, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे, लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिट्ठे, चिट्ठी हूं तुम्हार लिख लख लख एक दो एक दुठे, कर कर सांग हो रहे हैं होए मस्करा सवा सब ठिठे, मैथों बुरा न

बेमुख मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

श्री गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो, चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग, उल्लू अंध कंद प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है, त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए। तैसे मिल साध सं सक

थोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

सर तो सोना दानी न मोसो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तोसो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो बिकारी न तोसो उपकारी मोरे हैं अवगुण।

राग गौड़ी माला विच ऋषभ गंधार धैवत सुर कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दी जाति संपूर्ण वादी धैवत संवादी ऋषभ अते समा राग दा पहला पैर है। इस राग विच पाया लाल रतन मन पाया शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा दा राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां दा प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ट रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਬੀ ਗੀਤਾ ਕੌਰ ਪੈਂਟਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ।

पीने आप साजा पीने रचौना हो दुई गुर साजे का सन रिठो चाओ दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सबसे दिल ऐसे जिंद को कार्य आसन डिठो चाओ।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जीदान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जीदान ते भगती लाएं हरस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इत्थो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम। तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नूं किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नूं महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह। बाबा नंद लाल जी कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी हिराज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनू मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी है। उना वल ता हे प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखिया रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखिया रूहां नू भी ताजगियां देना है रुखिया रूहां नू भी सुखिया रूहां नू भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे। लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है जड़ां गजा दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा। समझो कि मर गई अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहंदे ने सच्चे पातशाह तू बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तो तेरी होंद तो इनकारी ने उहनां नूं भी तू अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो ते तो मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने ते तो मुनकर भी ने पर फिर भी तो उना दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे शब्द अंदर फरमांदे ने के मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है। मैं हुन निश्चा कर लिया है के दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है। गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है के परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुखदंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इस दे मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उस दे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मुह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों का राज आए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जाता है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है, ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है, पे इत्थे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ढीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ढीठ होके नहीं मंगदा, ढीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना। जब तक कोई ढीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है ओ करन कारण समर्थ होकर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चय ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपदी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे।

तरफ बह करके अर्थात समुद्र की मत कहो। काट वनस्पति सगरी दिख बहु के देखन खाज बने हो। सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपा ना बिनती

बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे, लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुद्र समावन चिट्ठे, चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दू एक दुतिठे, कर कर सांग हो रहे आं होए मस्करा सवा सब ठिठे, मैथों बुरा न

0: मारे
1: हो बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

फिर गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा ना लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में ना ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कन प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए। तैसे मिल साध संग सकल

हमारी, दृष्ट दर्श ही शब्द श्रुत ही बुद्ध बल ही सूदे हस्त न पावरी, प्रीतिहीन रीतिहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी, अंग अंगहीन दीना तीन परची ना लग

अनाथ नमो सर तो सोना दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तोसर मोसो अज्ञान न तोसो बिचारी मोसो न पतित न पावन तोसर मोसो बिकारी न तोसो उपकारी मोरे हैं अवगुण।

दुर्योधन एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं फिटका होके बोलिया दुर्योधन की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं

राजा बोली है, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

0: सुरनार साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर
1: आज जुगाद अना कलातारी तिन लोए अगम निगम उदरण जला जमे गुरु अमरदास थपयो परगामी तारण तारण
0: आगे अंतक बजे ना।

शिक्षा गुरबीटा नदी कम गाय कोलू चरखा चक्की चक थल बारे बहुत अनंत लाटू मादानी अलगा पंखी पौधियां लैना सासू चढ़।

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ ले हाजिर होया। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी है। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैं होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैं ये भरोसा है जिसके कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र के उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र हो, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख वाक्य। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नूं पंज प्रकार की रहत दिती है ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख वाक बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब कहते

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर धनसबान और उसने तीर जेड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जेड़े दूसरे तीर ने ना वह वज जान ते मुड़के कढ़े जा सकते हैं ते आदमी बच सकता है, पर अणियर तीर जेड़े ने वह बार नहीं आते। जो एक बार अंदर तस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लैदी दो कड़िया होंगे एव मुड़िया हुई है, एक सीधी होंगी तो दो एव मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने नाल फिर कहदिया हूं आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली यह हाल नहीं होना जोड़ा होया, पता की हाल हो सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन कर लिए आ रहे, उन्होंने सरदार ने पूछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाई हुई से, एक ने सरिया मार गया सरदार जी के सिर पर वो थले डिग पे, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एव करके वह दाड़ी भी सिखा जी चट फूकते थे वो अग लाती उथे सड़न बह गए। जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए भजन की कोशिश, पर दुष्टा को कितने भजना कोल ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना तड़क तार अलियर ना कबंध कोरड़ा, तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए थे जाके हम वी सी आर वेखना से यह कोल सी, बाकी कुछ नहीं सी गहने पाए से उन्हें दुष्टा ने एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचा कि भाई इन्होंने कभी साडे ते उपकार किए, ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लेंगे जरा हुण कर लेंगे, यह नहीं सोचा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण तिलक लाया होया जंगू पाया होया ते बहुत रोंदा होया कुरलाउंदा आया कहिंदा महाराज मैं बच्चा व्याह के लिया रहा सा ते मेरी नूह नूं आ दुष्ट जिहड़े ने मुगल दुंबे खाण वाले पूरा पूरा बकरा खाण वाले वह खो के लै गए। गुरु गोबिंद सिंह साहब एम सिंह सजे से उन्हें आख्या भाई अजीत सिंह जी तुम उठो अपने साहबजादे क्या उठो नाल दो चार सिंह लै लो इन्हों को एड्रैस लै लो और उस देवी हुणे ही आजाद करा के लियाओ और इस पंडित के घर जाके आप पूरी हिफाजत नाल छड़ के आओ। उन्हां पंडितां ने अज उन्हां अजीत सिंह दीआं भैणां नूं बाजार दे विच नंगिआं करके साडी अखां दे सामने इन्नी बेइज्जती की जो मेरे को कई नहीं जाती, लेकिन मैं कहना सिंगो यह पांच शस्त्र रखो धनकधार अड़ियर ऐसे तीर रखो जो बाहर आने लगे नाल आंदरा कमंद कोरड़ा, कमंद कोरड़ा एक ऐसा शस्त्र हों सरिए लैके आए थे ना मारन वो सरिया लैके जो आवे कमंद कोरड़ा एव भुआ के सरिए के मारी दे वह फिर एवं बल पा के सरिए काबू कर लेंद खिच के सरी अगले का अपने हाथ ही फड़ लेता उन्होंने भी हफे कर सकता इको ही छुट्टी का बस फिर बोरे सो दिया। इस वास्ते अज तुसी बाबा दीप सिंह साहब शहीद आजम का दीवान मना रहे हो यह तुसी प्रण करके जाओ शस्त्र की धार नहीं बनना डरना नहीं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने यह खंडे का अमृत सब सिखाया खंडे का अमृत क्यों सिखाया जी कृपाल का भी सिखा सकते होर भी किसी चीज खंडे का खंडे शस्त्र संस्कृत मौत कहते हैं मौत खंडा खंडे का अर्थ है मौत ते महाराज ने उन्हें पानी घोल के सिख नूं प्याता मौत नूं घोल के सिख पी गया सिख गुरु का सिंह मौत नूं घोल के पी गया ते दुष्ट कहिंदा मैं तेनूं वेख लूंगा
मार दूंगा। तो सिंह आता वो तेरी मौत मैं घोल के पीती हुई आने ही जलो आना ही इतने सवा लख नाल एकल रहूं तबे गोबिंद सिंह नाम का हो गुरु गोबिंद सिंह ने तो मौत घोल के पीती हुई है। तो पांच शस्त्र हाँ जी बाड़ी सर्व करो।

बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेड़ जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की, 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया, ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वो भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वो भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्होंने पिस्तौल ते उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्होंने हाथ च फड़ाते से, वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े। असीं डे सा कीर्तन कर बाबे नहीं साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवंदे सार देना, तियां तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज इन्हां नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब थापी दित्ती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दित्ता सी। महाराज ने प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्होंने नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ता हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग पछ बनो करकार कृपान कम पावेंगे, निकसे जिम केवर परबते ता सौ दिवाले पावेंगे, फल पाल पया संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक टुट निकसे जिम केवर परबते, केवर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हुंदा है वह जो फिर परबत तो पबक मार के छाल मार के जो मैदान च आउंदा है उन्होंने फिर जो ना वो पता की लिखे वो जरा आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा, ज्यो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुके, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर करवा, ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ते पज पै पज के वह 5-7 पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे होने जदों उन्हें वेख्या दुष्टा तो ये ते आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली वह 4,000 जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा 10-15 दम टुट गए 5-7 गोगे गोडे टुट गए है जी जो भज उठे वाले ए वेखन वाले भजन तो फिर एक उठे खलो गए। इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हाँ, ना असी बुढ़े मारते हाँ, ना असी बच्चे मारते हाँ, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्त खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जे आते उन्होंने छड़ के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे है जी 12,000 दुष्ट है सारे बाबा जी ने। मैं तो कहना महाराज इन्होंने सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 बजे दीवान लगा रज गए होवोगे, श्रवण करो।